Since that's the last hope that they come out from this book, the whole spark of Brahman can clear. Thank you for having it from Bordia Sulpati Kamarsundis, Bordia Kalsati, and Lassa Food Bantika Radio for the good at him, Kolpo, Radio Hatima Luzan, Giga Upali Kabati, Masitas and Posar, Pitiba, Kamarsundis, Rida, Mukimukis, Masar, Kasirish of Masay, Basuri Maiti, Hasik, Pihau, Masamuts and Palus, Hoskitis, again, Amapal, Vice Potip, Masuri, Nagar, Pali, Kakasas, Mixumai, Pina. अर्यातां सारमा पतिदिप्पमा थारु परिवार्न रहात नेपा पस्मा पिदुत अपुर्थी समस्या समाथार प्रना मंत्री सरेश्ट पप्पा की बतता उप्रेश्ण तपतार परक्षयक मर सरकार पर की बतवर संसार मंत्री डॉक्टर ती मुझेरा बता है आप पूरा समसार बासुरी धाउमा वला

संस्थान अध्याय सरकारी पांच सौ नगर पालिका को छिड़ी प्रबंधन कार्यक्रम से सरकारी अड़तीस दशमलव निर्माणमुखी पशुपालन से व्यवसायिक छिड़ी पालन और प्रदर्शन करेगा। एक कार्यक्रम से सदस्य महिला का आयोजन वृद्धि करना के संग आर्थिक सशक्तिकरण में प्राशय पुगेगा। सरकारी छिड़ी प्रबंधन कार्यक्रम पशु प्रसंस्करण भेट सरकारी अध्यक्ष

0: खाना हामीले साग सब्जी फलफुल सहित पोषण पूरक खानाले बच्चा खाना तन्दुरुस्त बनाए। पूरक खाना सँगसँग दुई वर्षसम्म स्थिरता जारी गरिए।
1: रेडियो बाबा एफएमको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय प्रयासले जनहितमा जारी सन्देश।

0: सकी बसेया दस बारह तेरह तरह सौभाग्य इसे परिचय शुक्रवार तीन सौ भाइयों को या तो बाहर बस दुर्घटना में उन्हें समय कनेक्ट भरता थे। प्रारंभिक अनुसंधान में सामूहिक सड़क बसाइया में चित्र सड़क और चालक के सबसे नियंत्रण गुमा दुर्घटना का मुख्य कारण देखा। अन्य समय में भंडा बसाइया में समय साधन दुर्घटना पड़ने भाई सावधानी पूर्वक चलाने ट्राफिक पहल ने अनुरोध कर
1: सवारी साधन चलाउनु भन्दा अगाडि समय प्रणाली अनिवार्य रूपमा

0: सब कार्य में स्वास्थ्य कार्य में ईश्वर की ऐसी क्षमता समय
1: सेवा करने उनका अवश्य दिन हमारा धन्यवाद।

0: स्थापित करना। रक्तों को तो लक्ष्य सत्र तटकर अवलोकन तो करेगा अनुभव की कमी हो पढ़ाई में ध्यान देना समस्या
1: रक्त पता मुझे पता का साग पात दाल गुड़ियाड़ा आरा मच्छी शिकार को फल फूल आयुक्त खाना नियमित रूप में खाई
0: जंक फूड कम करी संतुलित खाना खाना रोजी स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो रेडियो गुरुभावार्थों का सहकार्य स्वास्थ्य कार्य प्रत्याशी जनहित में जारी सदन।